0: बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर।
1: हेलो, आदाब, नमस्कार, गुड मॉर्निंग और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी की। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त, यानी कि आपकी दोस्त ज्योति, लेकर आई हूँ आप सभी का पसंदीदा शो नॉन स्टॉप गपशप सिर्फ और सिर्फ 107 एफएम रेनबो पर।

दोस्तों, जिंदगी में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो कभी धुंधले नहीं पड़ते। वो चेहरे जो जवानी, रोमांस, गर्मजोशी और बेपरवाह मुस्कान का दूसरा नाम बन जाते हैं। तो दोस्तों, आज है 4 सितंबर, यानी कि भारतीय सिनेमा के सबसे चार्मिंग एवरग्रीन लवर बॉय ऋषि कपूर साहब का जन्मदिन। स्वेटर का फैशन हो या हाथ में गिटार हो या डफली बजाते हुए दिल जीत लेने का अंदाज, चिंटू जी ने कई पीढ़ियों को मोहब्बत करना सिखाया। तो आज की इस 1 घंटे हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ ऋषि जी के नाम की गपशप, उनकी यादें और उनके सदाबहार तराने। लेकिन दोस्तों, मैं आप सभी से पूछना चाहूंगी कि ऋषि कपूर का वो कौन सा रोमांटिक गाना है जिसे सुनकर आपको अपने स्कूल, कॉलेज या लाइफ के पहले क्रश की याद आ जाती थी। जी बिल्कुल, तो मुझे फोन उठाइए और बताइए कि ये बातें जो है, जी हाँ, ये बातें जो हुई अभी और पहले जो क्रश की याद जो आ जाती थी, तो वो कौन होती थी, कैसे होती थी और कौन सी गीत सुनकर होती थी। बिल्कुल, नंबर आप सभी को पता है, फिर भी मैं बता दूं दोस्तों, 2213134122131314, जिस पर आप कॉल करके मुझे बता सकते हैं बिल्कुल कि ऋषि कपूर का वो कौन सा रोमांटिक गाना है जिसे सुनकर आपको अपने स्कूल, कॉलेज या लाइफ के पहले क्रश की याद आ जाती थी। तो दोस्तों, जब तक आप फोन उठाकर मुझे नंबर डायल करें, तब तक क्यों ना गीत सुन लिया जाए।

0: तो चलिए दोस्तों हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके थे, ये सुनते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। हेलो,
1: नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार,
1: मैं सुबोध माल बात कर रहा हूँ, गंगाधरपुर धर्मदरा हावड़ा से।
0: जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: थैंक यू दीदी। और आज जो ऋषि कपूर के बारे में गमला है
0: जी,
1: मैं तो सबसे पहले उसको श्रद्धांजलि करता हूँ उसके जन्मदिन पर
0: जी।
1: तो उसका जो फिल्म हम सब तो टीवी में देखा है, मैं बहुत अच्छा फिल्म है। तो उसके उसके चलते हुए आपने पूछा है जो कौन सा गाना वो सबसे अच्छा लगा। तो उसका एक फिल्म आए थे शाहरुख खान के साथ दीवाना, उसमें गाना था सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये जो गाना है बहुत अच्छा हमको लगा। और भी कुछ फिल्म है दामों में जैसा है, बोल लगा बोल है, उसका जो गाना है बहुत अच्छा लगा। और पुराना भी गाना जो हमने सुना सागर का,
0: बिल्कुल
1: ये सब फिल्म बहुत अच्छा लगा। तो एक बहुत बड़ा सबसे अपने उन्होंने तो बाल कलाकार से लेकर चरित्र बनाए भी किया, जितना भी फिल्म आया बहुत अच्छा लगा। खास करके उसका फिल्म आए थे उसको संजय दत्त और ऋतिक रोशन के साथ अग्नि अग्निपथ
0: जी,
1: उसका जो रोल निभाया था रामलाला का,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। उसका एक मैंने कपूर का फैमिली का मैंने लड़का है तो उसमें अभिनय है जो उसमें
0: दिखता है, उनकी कला दिखती है कि एक कपूर खानदान का बच्चे है लेकिन उनकी कला उसमें दिखती है। बिल्कुल
1: एकदम एकदम है
0: जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद और इतनी अच्छी बातें साझा करने के लिए, थैंक यू। तो दोस्तों स्टूडियो में समय हो चला 10:13:35 यानी कि बातों और गीतों का सिलसिला यूं ही चलने वाला है ठीक सुबह के 11 बजे तक। तो चलिए दोस्तों कुमार सानू की आवाज में फिल्म दीवाना से इस गीत को सुनते हैं।

0: तो दोस्तों हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके थे, ये सुनते कि वो क्या कहना चाहते हैं। हेलो,
1: मैं अरूप बोल रहा हूँ।
0: अरूप जी नमस्कार।
1: नमस्कार, मैं हावड़ा से बोल रहा हूँ
0: जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: देखिए, मैंने ऋषि कपूर का सबसे अच्छा फिल्म है बॉबी, मेरा ख्याल में। अच्छा, बॉबी में उसका वयस था 18 साल और टाइगर थे 14 बरस की।

0: तो चलिए दोस्तों, इस प्यार और दीवानगी को बरकरार रखते हुए अगले कॉलर की ओर रुख करते हैं। हेलो,
1: नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते,
1: और मैं दीपांकर माल बात कर रहा हूँ, गंगाधरपुर धर्मतला हावड़ा से।
0: जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दीपांकर जी।
1: और थैंक यू दीदी
0: जी।
1: और आज दीदी ऋषि कपूर के ऊपर आपको गम लेकर आए हैं
0: जी।
1: मैं ऋषि कपूर के लिए बात कहना चाहूंगा, जो वो जब अभिनय करता है ना दीदी, वो अलग नहीं करता,
0: बिल्कुल
1: ऐसी बात करता है, अभिनय हो जाता है।
0: बिल्कुल,
1: उनके जो ये क्वालिटी हमको बहुत अच्छा लगता है। और मैं एक बात करना चाहूंगा दीदी, ये हम एक गाना सुनना चाहता है, फिल्म का नाम है दामिनी
0: जी,
1: और शिल्पिया कुमार सानू गाने का बोल है, गावा है चांतारे गावा है
0: जी, बिल्कुल।
1: और ये जो कुमार सानू जी का आवाज है ना, जो जब ऋषि कपूर के फिल्में होता है, एकदम दोनों एक से ऊपर के मिल जाता है।
0: हाँ बिल्कुल, लगता है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने
1: हैं। कभी नहीं मालूम होता है जी कुमार सानू जी गा रहा है, जैसे फिल्म में देखता है ऋषि कपूर जी गा रहा है।
0: हाँ बिल्कुल,
1: ये जो मैंने ये बहुत अच्छा लगता है
0: जी।
1: और ऋषि कपूर की मैं जितना बोलूं उतना कम है दीदी।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: बहुत सारा उन्होंने फिल्म के में अभिनय किया है, खासकर जैसे प्रेम रोग देखिए दीदी, कितना अच्छा रोल था उन्होंने निभाया था
0: जी।
1: और मैं यही कहना चाहूंगा, अनुष्ठान बहुत अच्छा रही है
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्ते दीदी, अच्छा रहेंगे
0: जी। नमस्कार। बिल्कुल दोस्तों, ऋषि कपूर के विषय में जितनी बातें कही जाए वो भी कम है। यानी कि मैं कहने के लिए तो बहुत कुछ लेकर आई थी, लेकिन कहने के लिए मेरे दिमाग में भी बहुत कुछ है, पर मेरे कहने से पहले हमारे लिसनर जो है मेरी सारी मन की बातों को पढ़ ले रहे हैं और वो बता दे रहे हैं जी। बिल्कुल, यही तो खासियत है हमारे इस कार्यक्रम की, क्योंकि ये कार्यक्रम जो जुड़ा है दिल से, दिल तक का रिश्ता यूँ ही नहीं है हमारा।

0: हम भी इस कार्यक्रम एक गवाह बनाते हुए अपने अगले कॉलर की ओर रुख करते हैं। हेलो
1: जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग।
0: सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार।
1: प्रणाम, नमस्कार आपको भी।
0: जी, आपका शुभ नाम बताइए सभी को।
1: जी, मैं पारस पंडित चुचरा हुगली से बोल रहा हूँ।
0: जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पारस जी हमारे इस कार्यक्रम में।
1: जी धन्यवाद। सबसे पहले सभी श्रोताओं एवं आपके पूरे टीम को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।
0: जी,
1: एवं आने वाले शिक्षक दिवस के भी हार्दिक शुभकामनाएं।
0: जी धन्यवाद।
1: और आपके मतलब एक बहुत ही प्रिय आरजे की आज जन्मदिन है पापिया जी को, हार्दिक शुभकामनाएं।
0: जी जी, बहुत उनकी ओर से मैं भी आपको धन्यवाद दे देती हूँ।
1: धन्यवाद, धन्यवाद
0: जी।
1: सबसे पहले मैं ऋषि कपूर जी के बारे में बोलना चाहता हूँ। दो घटनाएं ऐसी बचपन की बता रहा हूँ जो कि ऋषि कपूर जी की ही जुबानी थी। सबसे पहले उन्हें बॉबी जोकर पिक्चर में मेरा नाम जोकर में बाल कलाकार का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो जब वे पुरस्कार लेकर घर पर गए तो उनके पिताजी राज कपूर जी बोले, जाओ दादाजी के पैरों में समर्पण कर दो। तो दादाजी उनके मैंने चूमने लगे और तो ऋषि कपूर जी कहते हैं कि मैंने दादाजी एक ही वाक्य बोले थे कि मेरे बेटे ने मेरा कर्ज उतार दिया।
0: बिल्कुल।
1: और दूसरा घटना ये है जब वो एक मतलब गाना नहीं है, प्यार हुआ इकरार हुआ।
0: जी जी, श्री
1: तो वो बचपन में पानी के बौछारे जब पड़ रहा था तो बहुत रो रहा था।
0: जी।
1: तो बहुत रो रहा था तो उन्हें नरगिस जी ने चॉकलेट देकर मतलब चॉकलेट का प्रलोभन देकर वो शूटिंग करवाया था।
0: अच्छा।
1: तो ये दो घटनाएं मेरे दिमाग में था तो मैंने आज शेयर कर दी।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: इसके अलावा ऋषि कपूर तो एक चार्मिंग हीरो है।
0: बिल्कुल।
1: मतलब 80 के दशक से 92,000 तक मतलब जितने भी नए नए न्यू कमर हीरोइन थे।
0: जी बिल्कुल।
1: सभी के साथ वो हीरो का रोल किए।
0: हाँ।
1: और उसके बाद लास्ट लगता है 100 नॉट आउट।
0: जी जी,
1: 100 नॉट आउट तक उन्होंने काम किए।
0: जी।
1: और 31 अप्रैल को शायद हमारे 2018 या 2019 को वे हम लोगों से रुखसत हो गए, लेकिन उनकी यादें अभी भी हम लोगों के
0: दिलों में हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो आप मुझे जहरीला इंसान का एक गीत सुना दीजिए जो कि बहुत ही रोमांटिक गीत है और बहुत ही सुंदर और अच्छा है।
0: जी बिल्कुल, आपकी ये फरमाइश आप तक मैं पहुंचा दूंगी और साथ ही इतनी अच्छी बात जी और घटनाओं को साझा करने के लिए मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूंगी।
1: धन्यवाद, नमस्कार।
0: धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए किशोर कुमार की आवाज में फिल्म जहरीला इंसान से इस गीत को सुनते हैं।

0: बिल्कुल दोस्तों, मैं अभी कहीं भी उड़ने नहीं वाली हूँ क्योंकि स्टूडियो में इस वक्त समय हो चला है 10:42:40. तो चलिए दोस्तों अगले कॉलर की ओर रुक करती हूँ। हेलो,
1: गुड मॉर्निंग ज्योति जी।
0: गुड मॉर्निंग,
1: मैं मुनीरुद्दीन लश्कर बात कर रहा हूँ, दक्षिण सांकरा इलाहाबाद से।
0: जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: सबसे पहले हमारे आरजे पापिया जी का जन्मदिन मुबारक।
0: और मैं आपको धन्यवाद कहती हूँ।
1: हमारे ज्योति जी का प्रोग्राम मतलब एक से बढ़कर एक का गानों का खजाना।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और एक से बढ़कर एक टॉपिक लाता है हमारे ज्योति जी।
0: जी
1: आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सबसे पहले
0: मैं भी आपकी शुक्रिया अदा कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों को मेरे लाया हुआ विषय पसंद आता है।
1: और ऋषि कपूर मतलब हिंदी फिल्म में हीरो का बेताज बादशाह
0: बिल्कुल
1: मन जाता है।
0: जी हाँ,
1: उसका बहुत सारे फिल्म है, प्रेम रोग है, वो भी है, दीवाना है, चांदनी है, बोल दादा बोल सागर, क्या बोलूं। लेकिन जो माइल फलक बना दिया ऋषि कपूर प्रेमों का माइल फलक, वो है 1976 का रंजीता के साथ लैला मजनू।
0: हाँ बिल्कुल,
1: आज भी वो एवरग्रीन है
0: बिल्कुल।
1: लेकिन मैं आज सुनूंगा कट फिल्म से दर्द दिल दर्द जिगर तुमने बनाया, जो मोहम्मद रफी का है, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का सुरों में और आनंद बख्शी का
0: बिल्कुल,
1: टीना मुनिम के साथ चिमिया गारे वाले भी है।
0: जी
1: आपका फिर एक बार शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे मौका देने के लिए बोलने की। थैंक यू मैम, थैंक यू,
0: बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, धन्यवाद। तो दोस्तों, ऋषि कपूर सिर्फ एक रोमांटिक हीरो नहीं थे, वे 70 और 80 के दशक के असली पॉप स्टार थे। तो जैसे अभी मोहिनुद्दीन जी ने कर्ज फिल्म का वो गीत बताया था दर्द दिल, लेकिन कर्ज फिल्म का जाना जाने कितने, मतलब उस फिल्म की जो हर गीत है, हर गीत अपने आप में ही लाजवाब है। चाहे वो कर्ज फिल्म का वो घूमने वाला विशाल काय रिकॉर्ड पर, उस पर थिरकते हुए ऋषि कपूर हाथ में गिटार थामे जब वो मंच पर आते थे तो थिएटर्स में लोग सीटों से खड़े होकर नाचने लगते थे। वो खुद कहते थे कि उन्हें डांस स्टेप्स कभी कोरियोग्राफ करवा कर रटने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो बस बीट सुनते और उनके कदम अपने आप ही थिरकने लगते थे। तो चलिए दोस्तों, कर्ज फिल्म का मोहम्मद रफी द्वारा गाया हुआ ये गीत आप सभी के लिए।

0: आज आप एक ऐसे एक्टर के बारे में प्रोग्राम कर रही हैं जिनके बारे में बोलना मतलब कितना कुछ है,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन इतने कम समय में सब कुछ समेटना बहुत मुश्किल होती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली।
0: और जब हम लोग हिंदी सिनेमा में जब रोमांस की बात करते हैं तो पहला नाम जो याद आता है वो ऋषि कपूर।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि ये मुझे लगता है ऋषि कपूर वॉज मोर अ स्टार देन एन एक्टर।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि स्टार जब तारे हम लोग देख सकते छू नहीं सकते, उनका ऑरा ऐसा था कि उनका जो नॉर्मल एक्सप्रेशंस जो होते हैं, जो आपका कोई एक जब वो स्क्रिप्ट पढ़ते थे मैं सुना था, जब वो इमोट करना स्क्रीन के सामने इमोट करना ये आसान नहीं है, लेकिन उनका नॉर्मल जो एक्सप्रेशन था वही एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगता था। और उनका जो स्टाइल जो फैशन उस जमाने का उस जमाने में ले आना, फिर उनका स्क्रीन प्रेजेंस
1: बिल्कुल जैसे गिटार और एक बात लेकर जो
0: ये जो प्रॉप्स लेते थे वही मतलब फैशन बन जाता था। सबको लगता था कि इस तरह से हम लोग ऋषि कपूर की तरह स्टाइल करके बैठे गिटार लेके या डफली लेके। और एक बात मुझे लगता था कि ऋषि कपूर ने अपना मुकाम खुद हासिल किया इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो एक कपूर फैमिली के हैं जहाँ पर एक्सपेक्टेशंस और प्रेशराइजेशन बहुत ज्यादा था।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि सब लोग सोचते थे कि राज कपूर फैमिली के हैं तो शम्मी कपूर शशि कपूर ये जो एक लेजेंड था, ये जो एक मैंने सो मेनी लेजेंड्स ऑल टुगेदर इन वन फैमिली, उसके बावजूद भी उन्होंने अपना आइडेंटिटी खुद बनाया। और मुझे लगता है अब आप सोचे कि हम किसी से कम नहीं का फिल्म, जहाँ पर वो जो गाना वो गा रहे हैं स्टेज पे ओम शांति ओम, उनमें जो एनर्जी था वो दौड़ दौड़ के जाना, क्योंकि उस जमाने में टेक्नोलॉजी तो ऐसा था नहीं कि इतना कट हो इतना ये हो वो हो, ठीक है, लेकिन वो जो एनर्जी था मुझे लगता है ऋषि कपूर का वही एक क्या बोलते हैं यूएसपी जो बोलते हैं हम लोग। तो कितने सारे गाने हैं, मतलब मुझे जो बहुत अच्छा लगता है गाना, फिल्म भी बहुत अच्छा था, वो है ये वादा रहा।
1: बिल्कुल जी,
0: तो उसमें सब गाने इतने अच्छे थे और पूनम ढिल्लो थी और टीना मुनीम भी थी, और इससे पहले भी एक कॉलर ने बताया बड़े दिल वाला। तो ये जो एक दौर था ऋषि कपूर का, ये ऐसा दौर था कि उसके बाद जो भी एक्टर्स आए जो रोमांटिक इमेज मतलब वो कभी फेड आउट नहीं हुआ। जैसे कि मुझे लगता है एक दौर आया 90s के टाइम में, लेट 90s, जहां पर बोल राधा बोल या दामिनी इस तरह के फिल्म में आप नोटिस करेंगी कि वो स्वेटर का जमाना आ गया।
1: बिल्कुल।
0: मतलब ऐसा लगा कि गर्मी में भी स्वेटर पहन ले, क्योंकि ऋषि कपूर ने पहना है।
1: जो स्टाइलिश स्वेटर होती थी क्या कहने,
0: अरे बाप रे बाप रे। तो मतलब ऋषि कपूर का फिल्म कितने सारे हैं, चाहे वो अपने टाइम के हो कि लेट 90s, जहां पर सबको लगता था कि एक एज के बाद वो हीरो का इमेज नहीं दे सकते।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन आप सोचिए कि बोल रहा था बोल या दामिनी के टाइम में उनका जितना एज था उसके हिसाब से एक हीरो का इमेज, जहाँ पर मीनाक्षी शेषाद्री या जूही चावला, क्योंकि उनका एज तो था नहीं
1: जी।
0: लेकिन इतने बेखूबी से उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया, तो वही काबिले तारीफ था।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।
0: थैंक यू,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो दोस्तों बातों ही पता ही नहीं चला कि कब 10 से 11 बजे है। जी हाँ, ये एक घंटा कैसे निकल गया। तो दोस्तों आज नॉन स्टॉप गपशप में हमने याद किया बॉलीवुड के सबसे चार्मिंग बिंदास और जिंदा दिल हीरो ऋषि कपूर को, जिस इंसान ने हमें सिखाया कि महफिल कैसे भी हो एंट्री हमेशा रॉक स्टार जैसी होनी चाहिए, उनकी याद कभी उदास नहीं कर सकती। चिंटू जी की असली विरासत ही यही है, हंसते गाते जिंदगी बिताना और दिल खोलकर प्यार करना। तो दोस्तों आज के शो को यही समाप्त करते हैं, लेकिन ऋषि जी के गानों की गुनगुनाहट आपके पूरे दिन को खुशनुमा बनाए रखेंगे। कल सुबह ठीक 10 बजे फिर से ट्यून इन करना मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों फिर से कल होंगी ढेर सारी नई मस्ती। जी हाँ, तो दोस्तों तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और दिन का पूरा मजा रहिए लीजिए। इसी आशा के साथ मैं आपकी दोस्त ज्योति आप सभी से लेती हूँ इजाजत, और जाते जाते किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में ये मधुर तराना आप सभी के लिए छोड़े जाते

0: हेलो
1: हेलो, गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग,
1: मैं शुभजीत बोल रहा हूँ बेलगोरिया से
0: जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है शुभजीत जी हमारे।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का आप सुन रहे हैं टीम का तड़का टीम का तड़का टीम का तड़का बरो 7 एफएम रेनबो पर टीम का तड़का टीम का तड़का टीम का तड़का बरो 7 एफएम रेनबो पर रेनबो पर रेनबो पर
3: जी हां दोस्तों नमस्कार और आदाब दोस्तों मैं हूं आपकी दोस्त रिंकू और आप सुन रहे हैं एफएम 107 रेनबो पर तीन का तड़का कार्यक्रम दोपहर के 3:05 हो चुके हैं वक्त हो गया है आपके पसंदीदा शो का जी हाँ याद दिला दूं ये शो सुस्ती से थोड़ी दूर आपकी चुस्ती और तंदुरुस्ती के साथ नए नए गीतों का तड़का लगाने वाला ये शो है आपके मूड में गानों का जबरदस्त तड़का लगाने के लिए मैं आ गई हूँ और आज का सफर बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि मेरे पिटारे में है बहुत सारे गीतों का भंडार तो चलिए वैसे भी आज जन्माष्टमी है कृष्ण जी का आज जन्मदिन है तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं उन्हीं का नाम लेकर और सुनते हैं भूल भुलैया से ये टाइटल ट्रैक

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे थे पिटबुल दिलजीत दोसान और नीर की आवाज में भूल भुलैया 3 से ये टाइटल ट्रैक। तो आपने तो भाप ही लिया होगा कि ये जो तीन का तड़का का शो है, बैक टू बैक एक से एक बढ़िया बढ़िया गीत मेरे पिटारे में है और सुपर हिट्स गाने हैं, तो फिर देर नहीं करना चाहिए और एक से एक गाने को बजा देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास वक्त की थोड़ी पाबंदी है और पाबंदियां तो सच में बहुत ही खराब होती है। तो चलिए सुनते हैं अरिजीत सिंह की आवाज में ये गीत।

0: जी हाँ दोस्तों, अरिजीत सिंह की आवाज में आप सुन रहे थे फिल्म वॉर से ये गीत, साथ में थी शिल्पा राव भी। और आपको बता दूं कि गीत के बोल लिखे थे कुमार ने और संगीत से सजाया था विशाल और शेखर ने। दोस्तों स्टूडियो की घड़ी में 3:15 हो चुके हैं, तो चलिए अभी सुन लेते हैं परियोजना प्रस्तुति।
1: 107 FM रेनबो प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति।
0: दोस्तों परियोजना प्रस्तुति में आज का विषय है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। जी हाँ, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना केंद्र सरकार की एक अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं को मुफ्त LPG गैस कनेक्शन प्रदान करना है। इस योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को की गई थी, ताकि ग्रामीण और वंचित परिवारों को लकड़ी, कोयले और गोबर के उपलों जैसे पारंपरिक अस्वास्थ्यकर ईंधनों से मुक्ति मिल सके। वैसे सरकार द्वारा इस योजना के विस्तारित चरणों के हाल ही का बहुत ही ज्यादा विस्तार से किए हैं, उसके हम मुख्य लाभ और विशेषताएं आपको बता रहे हैं। मुफ्त गैस कनेक्शन योजना के तहत पात्र महिलाओं को पूरी तरह से डिपॉजिट फ्री LPG कनेक्शन दिया जाता है। साथ ही कनेक्शन मिलने पर पहली गैस रिफिल और एक गैस स्टोव यानी कि चूल्हा सरकार द्वारा बिल्कुल मुफ्त प्रदान किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष के बजट के तहत उज्ज्वला लाभार्थियों को 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर पर 300 प्रति सिलेंडर की सब्सिडी सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। इस लक्षित सब्सिडी का लाभ लाभार्थी परिवार प्रतिवर्ष अधिकतम 9 रिफिल सिलेंडर तक उठा सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। आवेदन करने वाली केवल महिला होनी चाहिए जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो। आवेदक के घर में किसी भी तेल विपणन कंपनी जैसे इंडियन, HP, भारत गैस का पहले से ही कोई अन्य LPG कनेक्शन नहीं होना चाहिए। आवेदक महिला निम्नलिखित में से किसी एक श्रेणी से संबंधित होनी चाहिए, जो कि है SC/ST परिवार या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थी या अत्योदय अन्न योजना या अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि MBC, चाय के बागान और जनजातीय क्षेत्रों के निवासी या वन निवासी भी इसके पात्र हो सकते हैं। ऐसे गरीब परिवार जो सरकार के निर्धारित मापदंडों के अंतर्गत आते हैं। आप आवश्यक दस्तावेज क्या क्या इसमें लगते हैं आपको बता दूं कि KYC यानी कि भरा हुआ आवेदन फॉर्म और EKYC, आवेदक महिला का आधार कार्ड, असम और मेघालय को छोड़कर पते और पहचान के प्रमाण के रूप में अनिवार्य है।

0: राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया राशन कार्ड या परिवार की संरचनाओं को प्रमाणित करने वाला कोई अन्य दस्तावेज। सब्सिडी की राशि प्राप्त करने के लिए आधार से लिंक बैंक खाता संख्या और IFSC कोड भी जारी होना जरूरी है। योजना के लिए आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकता है। ऑनलाइन माध्यम से आप सीधे PMUY की आधारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहां अपनी पसंदीदा गैस कंपनी कोई भी उसको चुनकर आवश्यक विवरण भरे और दस्तावेज को अपलोड करे। ऑफलाइन माध्यम से आप अपने नजदीकी LPG वितरक यानी कि गैस एजेंसी के पास जाकर उज्ज्वला योजना का आवेदन फॉर्म ले सकते हैं। फॉर्म भरकर उसके साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपी जमा करनी होगी। यदि आप ऑनलाइन से विस्तृत स्टेप जानना चाहते हैं तो आपको PMUY की आधारिक वेबसाइट पर जाकर आपको ये पूरी जानकारी मिल सकती है।
1: 107 FM रेनबो प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का। आप सुन रहे हैं टीम का तड़का 107 FM रेनबो पर टीम का तड़का 107 FM रेनबो पर।

सुन रहे थे फिल्म ज्वेल थीप से ये गीत लुटेरा, न्यूमैन पिंटो, सचिन जिगर और शिल्पा राव की आवाज में। गीत के बोल लिखे थे कुमार ने और संगीत से सजाया था सचिन और जिगर ने। दोस्तों आपके दिल की धड़कनों का क्या हाल है, क्योंकि गाने तो एक से एक बज रहे हैं। अगले गाने पर चलने से पहले हम सभी आशिकों के लिए जो इस वक्त रेडियो सेट से चिपके हुए, एक बात अर्ज करती हूँ कि धड़कनों का कुछ ऐसे थाम लिया है उन्होंने कि अब सांसें भी लेते हैं तो उनकी खुशबू आती है। दोस्तों आइए अगला गाना सुनते हैं श्रेया घोषाल और निखिल पॉल जॉर्ज की आवाज में फिल्म बर्फी से।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे थे ये गीत और श्रेया घोषाल और निखिल पॉज जॉर्ज की आवाज में। लेकिन हमारी घड़ी जो है बिल्कुल बज चुकी है, 3:27 हो चुकी है। और दोस्तों अभी वक्त है कार्यक्रम उमंग का, लेकिन आपको क्या बताएं कि एक गीत और थोड़ी सी सुना देते, उसके बाद हम उमंग कार्यक्रम की ओर

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं विमलेश
1: और मैं अजीत महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी ने सुविचार भेजा है।
2: लिखते हैं, रिश्ते अनमोल होते हैं, इन्हें शब्दों से नहीं प्यार, विश्वास और सम्मान से निभाएं, क्योंकि सच्चे रिश्ते ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत होते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सुंदर संदेश के लिए। आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल।
2: धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजनी जंघेल जी ने हमारे परिवार वाले संवाद पर स्लोगन भेजा है। लिखते हैं,
1: शिक्षित परिवार बच्चों को केवल पढ़ना नहीं लेकिन अच्छा इंसान बनना भी सिखाता है।
2: इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से। कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू लिखते हैं,
1: नमस्कार। पेड़ की बात कार्यक्रम सुनते समय जब माइक्रोस्कोप पर तने और पत्ती को बच्चों को दिखाया गया तो हमें अपने छात्र जीवन के वो दिन याद आ गए जब हमने भी बायो लैब में इसी तरह दिन गुजारे थे
2: जी।
1: कार्यक्रम दिलचस्प और जिज्ञासा को शांत करने वाला रहा। उमंग की पूरी टीम को धन्यवाद और आभार।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया देने के लिए।
1: मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर जी लिखते हैं, सपने वही पूरे होते हैं जिन्हें मेहनत का सहारा मिलता है। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो कर्म से नाता रखता है, उसके लिए हर नया दिन एक नया अवसर लेकर आता है। बस विश्वास के साथ पहला कदम बढ़ाइए।
2: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने AI से संबंधित हमारी बातचीत पर एक विशेष प्रतिक्रिया भेजी है, आइए सुनते हैं।
2: विमलेश जी, अजीत जी नमस्कार, जय जोहार। 4 तारीख को कार्यक्रम उमंग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के बारे में आप दोनों की बातचीत सुनने को मिली। आपने बहुत ही उपयोगी जानकारी दी जिसमें AI के फायदे और नुकसान के बारे में बताया गया, सुनकर बहुत अच्छा लगा। उमंग टीम के साथ विमलेश जी और अजीत जी को बहुत बहुत बधाई।
1: आप सभी श्रोताओं को हम धन्यवाद देना चाहते हैं उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहकर संदेश भेजने के लिए
2: जी।
1: तो करते हैं शुरुआत हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी की
2: जी।
1: तो विमलेश जी, पहले दिन हमने भारत की बात की
2: जी,
1: आज का क्या कार्यक्रम है?
2: अजीत जी, आज हम चलेंगे हिमाचल प्रदेश की वादियों में। मुझे तो हिमाचल सुनते ही वहाँ की सुंदर सुरम्य घाटियाँ, सेबों से लदे बगान और हिमालय की चोटियाँ याद आ जाती हैं। हमारी आज की चर्चा का विषय होगा एक अमेरिकी व्यक्ति जिसने भारत में सेब को नई पहचान दी।
1: विमलेश जी, हमारे श्रोता सोच रहे होंगे कि आज एक अमेरिकी व्यक्ति की विशेष चर्चा क्यों, इसका औचित्य तो समझाइए।
2: जी जी जी जरूर। देखिए, हमारे भारत की विरासत इतनी समृद्ध है कि इससे प्रभावित होकर बहुत से विदेशी यहाँ आए और यहीं के होकर

0: गए, जैसे स्वीडन की मिस मार्गरेट नोबेल जो स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या बनकर बाद में सिस्टर निवेदिता कहलाई, और बंगाल की स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया।
1: जी बिल्कुल विमलेश जी, मुझे तो फ्रांस की मिस मिर्रा अल्फांसा की याद आ रही
0: जी,
1: जो श्री अरविंद की शिष्या बनी और बाद में मदर कहलाई
0: जी,
1: और साथ ही साथ मदर टेरेसा भी मुझे याद आती हैं।
0: तो अजीत जी, इसी क्रम में आज हम श्रोताओं को एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाना चाहेंगे जिसने भारत में आकर न सिर्फ यहाँ का जीवन जिया बल्कि पूरे प्रदेश की तकदीर बदल दी। अजीत जी, अब आपकी बारी कहानी को आगे बढ़ाने की।
1: जी श्रोताओं, जरा सोचिए, एक विदेशी युवक जिसने हिमाचल की पहाड़ियों में नए तरीके से सेब की खेती शुरू की
0: जी,
1: और उस खेती से लाखों किसानों की आजीविका चलने लगी।
0: वाह, ये तो सच में अद्भुत है। कौन था वो युवक?
1: विमलेश जी, उस युवक का नाम था सत्यानंद स्टोक्स
0: जी।
1: उसका मूल नाम सैमुअल इवांस स्टोक जूनियर था। उसका जन्म अमेरिका के एक समृद्ध परिवार में हुआ था। आराम की जिंदगी उनके सामने थी, लेकिन उन्होंने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना।
0: तो वे भारत क्यों आए?
1: युवावस्था में वे मात्र 22 वर्ष की आयु में अमेरिका के फिलाडेल्फिया से कुष्ठ रोगियों की सेवा की भावना से भारत आए
0: जी,
1: और हिमाचल प्रदेश के कोटगढ़ क्षेत्र में रहने लगे। उन दिनों वहाँ के लोगों का जीवन बहुत कठिन था।
0: श्रोताओ, वो एक ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो सिर्फ दूर खड़े होकर केवल सलाह देते हैं, वे लोगों के सुख दुख में सहभागी बने।
1: बिल्कुल, यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। बाद में उन्होंने भारतीय संस्कृति को अपनाया और अपना नाम सत्यानंद रख लिया। उन्होंने भारतीय जीवन पद्धति को भी सम्मान दिया।
0: अजीत जी, हम बात कर रहे थे सेब की खेती के बारे में
1: जी। देखिए, ऐसा नहीं था कि उन दिनों हिमाचल में सेब की खेती नहीं होती थी, समस्या थी गुणवत्ता की
0: जी।
1: तो उन्होंने, यानी सत्यानंद जी ने, अमेरिका के लुसियाना प्रांत से उच्च गुणवत्ता वाले सेब के पौधे मंगवाए और हिमाचल में लगाए
0: जी।
1: शुरुआत आसान नहीं थी, लोगों को विश्वास ही नहीं था कि इससे कोई बड़ा परिवर्तन आएगा,
0: लेकिन धीरे धीरे जब उन पौधों ने फल देना शुरू किया तो इन उच्च गुणवत्ता वाले सेब के फलों ने बाजारों में धूम मचा दी। उनकी भारी मांग होने लगी और इससे हजारों किसानों के जीवन में भारी परिवर्तन आया।
1: और हम सब जानते हैं कि आज हिमाचल के सेब पूरे देश में ही नहीं लेकिन पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं।
0: जी,
1: न जाने कितने किसानों का जीवन बदल गया। एक व्यक्ति का दूरदर्शी निर्णय लाखों लोगों के लिए आशीर्वाद और वरदान बन गया। इसलिए तो उन्हें, यानी सत्यानंद स्टोक्स को, हिमाचल का एप्पल मैन भी कहा जाता है।
0: जी हाँ, फलों का व्यापार बढ़ा तो सड़कें भी बनी, बागवानी का विस्तार हुआ, फलों की खेती में नवाचार शुरू हुए, धीरे धीरे उस क्षेत्र का कायाकल्प हो गया। लेकिन श्रोताओ, उनका योगदान केवल खेती तक ही सीमित नहीं था, है ना जी? जी
1: जी हाँ विमलेश जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। सच्चाई ये है कि सत्यानंद जी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़े। उन्होंने महात्मा गांधी के विचारों का समर्थन किया और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आवाज उठाई
0: जी,
1: जिसके कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा।
0: यानी जिस व्यक्ति ने पहाड़ों में पौधे लगाए थे उसी व्यक्ति ने अन्याय के विरुद्ध भी आवाज उठाई, उन्हें जेल भी जाना पड़ा। उनकी कहानी हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा देती है, देशभक्ति केवल जन्म से नहीं होती, कभी कभी सेवा से भी पैदा होती है। अजीत जी, तो अब करते हैं समापन कुछ विचारों के साथ।
1: जी जरूर।
0: श्रोताओ, कल्पना कीजिए, एक दिन था जब उस युवक के हाथ में कुछ पौधे थे और उन पौधों ने वहाँ के लोगों के जीवन की दिशा बदल दी। शायद हमारे पास हजारों एकड़ जमीन नहीं है, लेकिन हमारे हाथों में भी कोई न कोई पौधा तो अवश्य ही है, कोई विचार, कोई सेवा।
1: जी, शायद कोई प्रतिभा या आंखों के सामने कोई ऐसा बच्चा जिसे हम शिक्षा दे सकते हैं, तो इसलिए
0: कभी किसी काम को छोटा मत समझिए, क्योंकि विशाल वृक्ष भी एक छोटे से बीज या पौधे से आरंभ होते हैं। इसलिए हम जहाँ भी रहें यूं ही जीवन व्यतीत न करें, कुछ ऐसा रोप कर जाएं जिसकी छाया आने वाली पीढ़ियां पा सकें।
1: जी, बहुत अच्छा विचार। तो साथियों, ये थी एक अमेरिकी युवक की भारत से प्रेम की कहानी। आज कभी यदि आप हिमाचल जाएं तो वहां के सेबों से लदे बागों को देखकर इस व्यक्ति को जरूर याद करें, जो सैमुअल इवांस स्टोक्स जूनियर से अब सत्यानंद स्टोक्स के नाम से इतिहास में जाना जाता है।
0: जी, और आपको सूचना दे दें कि एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए आप किसी भी सर्च इंजन में जाकर एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ टाइप कीजिए, विकल्पों का अनुसरण कीजिए और पुस्तकों का लाभ उठाइए।
1: जी, इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप एनसीईआरटी के बारे में अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हमारे कार्यक्रमों को आप सुनना चाहते हैं या पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो एनसीईआरटी यूट्यूब चैनल पर जाइए। आपको वहाँ कक्षा 9 तक की सारी पुस्तकें ध्वनि रूप में उपलब्ध हो जाएंगी।
0: तो प्रस्तुत है आज का प्रश्न।
1: प्रश्न है, सत्यानंद स्टोक्स किस देश के किस शहर के निवासी थे? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: सत्यानंद स्टोक्स किस देश के किस शहर के निवासी थे?
1: आप अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर यानी 8800044059 पर

0: और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। तो अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। पहला कार्यक्रम है मेरे तो गिरिधर गोपाल।
1: इस कार्यक्रम में भक्ति मीराबाई के जीवन और उनकी कृष्ण भक्ति का विशेष उल्लेख किया गया है और चर्चा की गई है कि आज भी आधुनिक साहित्य उनकी कृतियों के प्रति आभारी है।
2: मेरे तो गिरिधर गोपाल।

0: मीराबाई श्री कृष्ण की परम भक्त। उन्हें भक्ति काल के प्रमुख संतों में गिना जाता है। जन जन में प्रचलित मीरा के भजन उनकी सरल आस्था का सीधा साधा चित्रण है।
1: बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन।
0: इस भक्त कवित्री ने लगभग 1300 भजन लिखे।

0: मीराबाई का जन्म राजस्थान में हुआ था। वो जोधपुर की एक रियासत मेड़ता के महाराज राव रतन सिंह की बेटी थी। बचपन में ही माता पिता का साया उनके सर से उठ गया था, इसलिए मीरा का पालन पोषण उनके दादाजी राव दूदा ने किया। शिक्षा के साथ साथ मीरा ने प्रशासन, राजनीति और संगीत में भी कुशलता प्राप्त की।
1: राव दूदा मीरा को बहुत लाड़ प्यार से पालते। नन्ही मीरा की भोली भाली बातों पर वो मोहित हुए रहते।
0: एक दिन की बात है, राव दूदा कृष्ण की मूर्ति के आगे पूजा कर रहे थे। तभी बाहर किसी की बारात को देख मीरा अपने दादाजी के पास आई।
2: बाबा, ओ बाबा, देखो तो घोड़े पर चढ़कर कौन जा रहा है?
3: अरे देखो तो, अरे ये तो बारात जा रही है।
2: देखो चमचम वस्त्र पहने हैं, कैसी सुंदर पगड़ी है। ये कौन है बाबा, ये कहाँ जा रहा है?
3: अरे ये दूल्हा है बिटिया, शादी करने जा रहा है। अभी उसकी बारात जा रही है, फिर किसी लड़की से शादी करके उसे पालकी में लेकर वापस आ जाएगा।
2: और मेरा दूल्हा कौन होगा बाबा?
3: अरे होगा बेटी, वो भी हो जाएगा रानी बिटिया, पर अब तू मुझे पूजा पूरी कर लेने दे।
2: नहीं, पहले आप मुझे बताइए मेरा दूल्हा कौन है, वरना मैं आपको गिरधर गोपाल का शिंगार नहीं करने दूंगी।
3: अरे भाई बता दूंगा ना बेटी।
2: नहीं, पहले आप मुझे बताइए।
3: बेटी ये श्रृंगार इसीलिए तो कर रहा हूँ, यही है तेरा दूल्हा।
2: सच बाबा, ये है मेरा दूल्हा।
3: सच्ची भाई?
2: मेरा दूल्हा गिरधर गोपाल।
0: बचपन की इस भोली घटना के बाद से ही मीरा जैसे जैसे बड़ी होती गई कृष्ण भक्ति में रमती गई।

0: चित्तौड़ के राजा राणा सांगा के बड़े बेटे भोजराज से मीरा का विवाह हुआ। लेकिन मीरा मन ही मन श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी और उनके ध्यान में खोई रहती थी।
1: पति भोजराज और ससुर राणा सांगा मीरा के इस निश्चल व्यवहार को बहुत सहजता से लेते,
0: परंतु ससुराल के अन्य लोगों को मीरा का ये रूप पसंद ना आता था।
2: उदा भाई, देखो तो मीरा तैयार हुई या नहीं।
3: भाभी की बातें मेरी समझ में नहीं आती माँ साहब। मैंने तो सुबह उनसे कह दिया था कि शक्ति माँ के दर्शन करने जाना है।
2: हाँ,

0: फिर?
1: पर वो ना तो कुछ बोली और ना ही चली।
0: हाँ
1: हाँ, बस बैठी उस कृष्ण की मूर्ति की तरफ देखती रही।
0: हाय हाय,
1: जिसे अपने मायके से लाई है।
2: तू क्या अब तक तैयार नहीं हुई?
1: नहीं जी, तैयार होना तो दूर, वहाँ तो गाना बजाना चल रहा है।
3: नैनन में नंदलाल।
4: एक के बाद एक पति भोजराज और ससुर राणा सांगा की मृत्यु के बाद मीरा पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा।
5: अब राणा सांगा का छोटा बेटा राणा विक्रमादित्य राजा बन चुका था।
4: विधवा मीरा का यूं गिरधर गोपाल के ध्यान में खोए रहना, नाचना गाना उसे राजघराने की परंपरा के अनुकूल न लगता था। वो अनेक तरीकों से मीरा को डराता, धमकाता, मीरा को मारने के षड्यंत्र करता।

0: ये विष, ये विष अवश्य ही हमारा काम करेगा। भाभी सा तैयार है ना आप? ये आपके गिरधर गोपाल का चरणामृत है भाभी सा। आपको गिरधर गोपाल में विलीन कर देगा।
1: दासी, दासी।
2: जी, जी, जी राणा जी महाराज।
0: जाओ, ये कटोरा मीरा भाभी सा को दे आओ। उनसे कहना ये उनके कान्हा का प्रसाद है। क्या कहा? कान्हा का प्रसाद, चरणामृत।
2: जी महाराज।
0: जाओ, जल्दी पहुंचा दो इसे, कहीं देर ना हो जाए।
2: जो आज्ञा महाराज।
0: गिरधर गोपाल का चरणामृत।
2: रानी सा की जय हो।
3: आओ सखी, भीतर आओ।
2: जी, वो
3: क्या हुआ सखी? तनिक चिंतित सी लग रही हो।
2: वो कुछ नहीं।
3: कहो ना सखी, क्या बात है?
2: वो रानी सा, वो महाराज राणा ने आपके लिए कान्हा का प्रसाद भेजा है। ये चरणामृत।
3: क्या? मेरे कान्हा का प्रसाद?
2: पर हमें तनिक शंका होती है।
3: दो दो हमें, हम अभी पियेंगे।
2: रुकिए रानी सा, जरा ठहरिए रानी सा। क्या मालूम विष हुआ तो?
4: राणा भेजा विष का प्याला, पीवत मस्त होई। दास मीरा लाल गिरधर, होनी हो सो

माना जाता है कि राणा ने कभी टोकरी में सांप भेजा, कभी मीरा के बिस्तर पर कांटे बिछवाए, लेकिन कृष्ण के प्रति आस्था मीरा को हर कष्ट से बचाती रही।

0: और एक दिन वो भी आया जब मीरा महल के सारे सुख और आराम छोड़कर मेवाड़ त्याग कर वृंदावन की ओर चलती।
1: हाथ में एक तारा लिए जोगन बनी मीरा को यूं रास्तों में नाचते गाते देख लोग हैरान हो जाते।
0: कुछ लोगों

0: वो मीरा का ये दिव्य रूप मोहित करता, लेकिन मीरा का यूं नाचना गाना उस समय के कुछ अंधविश्वासी लोगों के लिए बहुत असहनीय था। रास्ते में लोग तरह तरह की बातें करते।
1: भाई साहब, सुना है कि रानी मीरा ने महल छोड़ दिया।
2: अरे छोड़ना ही था
3: और कहीं, विधवा होकर नाचनो गानो
2: और क्या।
1: अरे भाई, पर ऐसी भक्त को भला कोई दीवारों में बांध सकता है क्या?
4: चेहरे पर कैसा दिव्य तेज है।
5: हाँ, कितनी भली है रानी साहब।
6: गाती भी बहुत अच्छा है।
1: बहुत अच्छा, मैं मिला हूँ एक बार उनसे।
7: वो देखो, वो आ रही हैं, तुम्हारी रानी सा।
8: प्रणाम रानी सा।
9: प्रणाम रानी सा।
10: प्रणाम। जय श्री कृष्ण भाई। जय श्री कृष्ण।
11: ऐसे पैदल कहाँ जा रही हैं रानी सा?
10: अपने कान्हा के पास वृंदावन।
8: यूँ अपने घर परिवार को छोड़कर?
10: मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई।
1: मगर लोग क्या कहेंगे रानी सा?
7: राजकुमार भोजराज की विधवा और
10: जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई।
0: इस तरह समाज की और कुल की रीतियों को तोड़ती मीरा वृंदावन जा पहुंची।

0: इस समय की भी एक घटना बहुत प्रसिद्ध है।
1: कहा जाता है कि उस समय चैतन्य संप्रदाय के परम सिद्ध संत श्री रूप गोस्वामी वहां रहते थे।

0: मीराबाई उनसे मिलना और उनके दर्शन करना चाहती थी, परंतु गोस्वामी जी ने कहला भेजा,
1: हम स्त्रियों से नहीं मिलते।
2: क्या सच? गोस्वामी जी ने ऐसा कहा?
3: जी हाँ माता, गोस्वामी जी स्त्रियों से भेंट नहीं करते, उन्होंने सदा इस नियम का पालन किया है।
2: हम तो समझते थे कि वृंदावन में श्री कृष्ण ही एकमात्र पुरुष है। ठीक है, जैसी हरी इच्छा, चलती हूँ। स्वामी जी से कहना, संत देख दौड़ी आई, जगत देख रोई, संत सदा शीश राखूं, राम हृदय होई।

कहते हैं गोस्वामी जी मीराबाई की इस बात से इतने प्रभावित हुए कि स्वयं नंगे पांव बाहर तक आए और संत मीरा से मिले। मीरा वृंदावन की गलियों में, मंदिरों में नाचती गाती

0: फिर एक दिन वो वृंदावन छोड़ द्वारिकापुरी चली गई।
1: वहां उन्होंने रणछोड़ जी के मंदिर में डेरा जमाया। यहां वो अपने कान्हा की चाकरी करती।

0: जन जन की प्यारी बन चुकी थीं।
1: उनकी ये लोकप्रियता उनके मायके मेड़ता और ससुराल मेवाड़ तक भी जा पहुंची। मीरा इस सब से अनजान कृष्ण की भक्ति में खोई रहती।

0: सुंदर।
1: मीरा बाई के दर्शन करके मैं तो धन्य हो गया।
2: कितनी मधुर आवाज।
3: हाँ।
2: सुना है मेड़ता और मेवाड़ दोनों राज्यों से उन्हें बुलावा आया है।
3: क्या?
4: हाँ, पर वो गई नहीं।
1: अरे सुना तो ये भी है कि उन्हें वापस ले जाने के लिए
5: ब्राह्मण भी भेजे गए हैं।
2: तो क्या हमारी मीरा बाई चली जाएंगी?
4: पता नहीं, उनके बिना तो सब कितना सोना सोना लगेगा।
1: हाँ भैया, बहुत सोना हो जाएगा।
6: कहते हैं कि ब्राह्मणों के हठपूर्वक धरना देने पर मीराबाई श्री रणछोड़ जी से आज्ञा लेने मंदिर के भीतर गईं और वहीं मूर्ति में आत्मसात हो गईं।
7: विश्वास जो मानता हो, तर्क जो कहता हो, लेकिन ये सच है कि मीराबाई सीधी, सुगढ़ और सपाट भाषा में कविता रचने वाली अनोखी भक्त कवित्री थी।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम मेरे तो गिरधर गोपाल, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम कुंजम्मा का जन्मदिन।
1: ये कार्यक्रम बच्चों में गणितीय और संख्या ज्ञान के कौशल को विकसित करने के उद्देश्य से बनाया गया है, जिसमें एक बच्ची के जन्मदिन की पार्टी में हुए मनोरंजक संवाद बच्चों में नवाचार को प्रोत्साहित करते हैं।

0: Lom thay khẩu. Tôi mới lúc khâu mình thấy. ये लो तुम भी लो।
1: मैं तो अपने जन्मदिन पर केक काटता हूँ।
2: मैं भी
3: मैं तो अपने जन्मदिन पे समोसे खिलाता हूँ।
0: मेरे घर पे तो जन्मदिन पे तो ढेर सारी मिठाई आती है।
4: हाँ, यहाँ पर रखी तो है कितनी सारी।
5: क्या हर साल इतनी मिठाई आती है?
0: हर साल जब मेरा जन्मदिन होता है तब मैं जितने किलोग्राम की होती हूँ उससे दुगनी मिठाई आती है हमारे घर पे।
6: इतनी ढेर सी मिठाई का क्या करते हो?
0: सबको बांटते और सबको खिलाते हैं। पता है जब मेरा जन्म हुआ था मैं 3 किलोग्राम की थी।
5: अच्छा, फिर तो तुम्हारे घर में 6 किलोग्राम मिठाई आई होगी।
1: हाँ, ये बात तो ठीक है,
5: हो गई दुगनी।
3: अब तुम कितने किलोग्राम की हो कुंजम्मा?
0: अब मैं 30 किलोग्राम की हूँ।
5: तो अब तुम्हारे घर में क्या 60 किलो मिठाई रखी है?
0: हाँ, 60 किलोग्राम है।
1: अगर तुम 30 किलोग्राम और 50 ग्राम की होती तो
0: अरे बस, किलोग्राम जितनी मिठाई लाते हैं। वैसे तो मैं अब भी 30 किलोग्राम और 500 ग्राम की हूँ।
3: इस हिसाब से तो तुम्हारे घर में 61 किलोग्राम मिठाई आनी चाहिए।
1: हाँ हाँ, 61 किलोग्राम। अगर ऐसे तो हाथी की मम्मी भी ऐसी मिठाइयाँ बांटती तो।
4: पता है, हाथी का बच्चा 300 किलोग्राम का होता है।
7: 300 किलोग्राम?
4: तो उसकी मम्मी क्या 600 किलोग्राम मिठाई लाती है?
1: और चींटी की मम्मी, उसका भार तो 1 मिलीग्राम होगा।
5: 2 मिलीग्राम की मिठाई कौन बनाएगा?
4: और अगर डायनासोर को मिठाई बांटनी होती तो?
0: तुम छोटे डायनासोर की

0: हम तो मिठाई खाते हैं।
1: हाँ, कहीं 60 किलोग्राम मिठाई खत्म ना हो जाए।
2: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम कुंजम्मा का जन्मदिन, और इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यही समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी चेतना, जगबंधु और कुसुम लता के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार। उमंग उमंग उमंग
4: उमंग। जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम उमंग, और अभी किसी से के साथ ब्रिंकू को इजाजत दीजिए 107 FM रेनबो पर, क्योंकि इस वक्त बज रहे हैं घड़ी में 3:59:47। 107 FM रेनबो पर आप सुन रहे थे कार्यक्रम 3 का तड़का, जिसमें आप सुन रहे थे उमंग। अब ब्रिंकू को इसी के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
2: सेल्यूलॉइड सुपर हिट्स।
3: जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, और आज के इस सफर पे छायालोक में हम सुन रहे हैं 107 एफएम रेनबो पर आरजे रिंकू के साथ कुछ खास बातें, कुछ खास गीतों के साथ। वो कहते हैं कि दोस्ती का रिश्ता दो अनजानों को करीब लाता है और हर पल को खुशियों से ही सजाता है। खुश नसीब होते हैं वे लोग दुनिया में जिन्हें हमारे जैसा और आपके जैसा सच्चा दोस्त मिल जाता है। और गीतों के इस सफर में 107 एफएम रेनबो पर हम सेलोलाइट सुपर हिट्स में एक से एक बेहतरीन गानों को सुनेंगे और समझेंगे दिलों की उन दिनों की बातों को जिनको हम भूलते चले आ रहे हैं, लेकिन साथ में नए गीतों की भी धुन को पकड़ेंगे। तो देर किस बात की, लता मंगेशकर की आवाज में सुनते हैं ये गीत।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे थे आनंद बख्शी के बोल से लिखे गीत। ये फिल्म राम लखन से और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत को सजाया था। कहते हैं कि गाने सिर्फ शब्द नहीं होते, ये वो एहसास होते हैं जो हम बिना कहे बयां कर देते हैं। वैसे भी इस प्यार भरे गीतों के सफर में मैं सिर्फ गाने नहीं सुना रही, बल्कि अपनी, हमारी और आपकी और फिल्मों की अनकही बातें भी शब्दों में बयां करके नहीं, बिल्कुल संगीत के माध्यम से आपके तक पहुंचा रही हूं। और कहते हैं कि फूलों की महक भी फीकी लगती है जब चेहरे पर मुस्कान गीतों की सचती है। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और SB बाला सुब्रमण्यम की आवाज में फिल्म मैंने प्यार किया से ये गीत।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और एस बी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में ये गीत फिल्म मैंने प्यार किया से। वैसे 90 के दशक के गानों में जो सादगी थी, जो ठहराव था, वो आज के गानों में थोड़ी बहुत कमी है। और उसी के दौर पे ऐसा नगमा जिसे हम सुनकर आज भी अपने दिल को मचल उठाते हैं, जिनमें हम अपनी इस बातों को छू कर कि गुजरे हुए दौर की वो हर बात पुरानी याद आते हैं। जी हाँ, वैसे गीतों को थोड़ा

सा और हम स्टाइल से थोड़ा एक कदम आगे आते हैं और सुनते हैं ऐसे गीत जिसमें हम 1999 के दौर पे पहुंच चुके हैं। आइए सुनते हैं आशा भोसले, आदित्य नारायण और रिचा शर्मा की आवाज में ये गीत फिल्म ताल से।

0: जी हाँ दोस्तों, फिल्म ताल 1999 में आई सुभाष घई की ब्लॉकबस्टर म्यूजिकल फिल्म ताल का एक बेहद और अनूठा कमाल का ये गीत था। इस गाने को संगीत के जादूगर एआर रहमान ने कंपोज किया था और साथ ही इस गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी साहब ने। वैसे इस फिल्म की और इस गीत की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि त्रिकोणीय जुगलबंदी से के द्वारा इस गीत को फिल्माया गया था। वैसे इसमें तीन तीन अलग पीढ़ी और शैलियों के गायकों को एक साथ लाया गया। जी हाँ, आशा भोसले और मखमली सीनियोरिटी, साथ में थी ऋचा शर्मा का सूफियाना और लोक रंग, और था आदित्य नारायण की मासूमियत। दोस्तों, आशा भोसले की मखमली गाने का मुख्य हिस्सा जो आशा जी की आवाज में है, जहां वो एक अनुभवी प्रेमिका के दर्द को और ठहराव को भी बयां करती है, लेकिन ऋचा शर्मा जहां पर सूफियाना और लोक रंग में आओ सयों वाला आलाप ऊंचे सुर में देकर सूफिया फ्यूजन का एहसास अपने राजस्थानी लुक के साथ देती हैं, वहीं उसी समय आदित्य नारायण बहुत छोटे तौर पे होने के बावजूद भी गाने में वेस्टर्न और चुलबुला का तड़का लगाए में बेहद गंभीर दर्द के बीच में एक खूबसूरत विरोधाभास पैदा करता है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं 107 एफएम रेनबो पर रिंकू के साथ सेलुलर सुपर हिट्स छायालोक, और छायालोक में अगला गीत क्या है कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में सुनेंगे।
1: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 एफएम रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छाया लो, छाया लो।

से कविता कृष्णमूर्ति जी ने इस गाने में अपनी आवाज के उतार चढ़ाव और भावनाओं से ऐसी जान फूंक दी कि इसे फिल्म का एक और गाना हवाई हवा भी कविता जी ने ही गाया था, जो आज भी भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित गानों में गिना जाता है। आइए गीत का अगला जो 107 एफएम में दौर है वो सुनते हैं लता मंगेशकर और बाबला की आवाज में फिल्म चांदनी से।

जी हाँ दोस्तों, ये गाना चालबाज फिल्म में कविता कृष्णमूर्ति ने गाया था। और कविता कृष्णमूर्ति जी एक बेहद ही सपने जीवन में एक कलाकार के रूप में, बहुभाषी गायिका के रूप में, हिंदी में नहीं बल्कि बंगाली, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मराठी और भोजपुरी सहित करीब 45 विभिन्न भाषाओं में हजारों गाने रिकॉर्ड किए हैं उन्होंने।

0: जी हाँ दोस्तों, आप ये बेहद ही सुरीली आवाज में जो गीत सुन रहे थे वो गीत गा रही थी लता मंगेशकर जी और साथ दे रहे थे उनका बाबला जी, साथ में आनंद बख्शी जी के बोल और शिव हरी जी का म्यूजिक इस फिल्म चांदनी में श्रीदेवी के करियर को चकाचौंध रोशनी पे पहुंचाने वाली ये फिल्म थी यश चोपड़ा की। और सच में 107 एफएम रेनबो पे ऐसे ऐसे गीतों का सुपरहिट चलेवुड में इस तरह के गीत शहलों में ही बजते हैं और मैं बजा रही हूँ यानी कि रिंकू के साथ आप सुन रहे हैं 107 एफएम रेनबो पर छाया लोग।
1: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छाया लोग, छाया लोग 107 एफएम रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छाया लोग, छाया लोग।

जी हाँ दोस्तों, कुमार सानू की आवाज में ये गीत 1942 अ लव स्टोरी से आप सुन रहे थे और इस गीत को गा रहे थे कुमार सानू। वैसे तो आर डी बर्मन जी के इस गीत ने, इस लास्ट गीत ने हमेशा की तरह वही जादू बरकरार रखा और गीतों का सिलसिला यूं ही सजाए रखा। यहाँ आर डी बर्मन और कुमार शानू के साथ आप इस गीत को सुन रहे थे और अब सुनते हैं अलका याग्निक की आवाज में फिल्म इश्क विश्क से ये गीत।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे थे अलका याग्निक की आवाज में फिल्म इश्क विश्क से ये गीत है। वैसे 107 एफएम रेनबो पर वक्त हो चुका है 7:53 का, और अभी एक गीत और सुनाऊंगी मैं आपको, उसके बाद आरजे देविका आपके साथ होंगी 8 से 9 तक। इससे साथ रिंकू को आपको इजाजत देनी होगी, क्योंकि ये का इस घड़ी का इस पल का इस वक्त का मैं ही थी बेकरार कलाकार, और आपके साथ यूं ही रहूंगी अरिजीत सिंह की आवाज में। अगला गीत आपके लिए सुनते जाइए और रिंकू को इजाजत दीजिए इस घड़ी से, और अगली कड़ी में आपके साथ आरजे देवी कहूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।

Celluloid Super Hits. पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।

स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 8:08 और 27 सेकंड। आप सुन रहे हैं जी हाँ 107 FM रेनबो, दिल से दिल तक म्यूजिकल और छायालोक कार्यक्रम के अंतर्गत आप सभी का स्वागत कर रही हूँ मैं आपकी दोस्त और होस्ट देविका। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के विशेष दिन की। जी हाँ, आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी शुभकामना के साथ आज का कार्यक्रम हो चुका है शुरू। अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले, उदित नारायण और वैशाली की आवाज में फिल्म लगान से ये गीत। और अगला गीत आप सुनेंगे हम साथ साथ हैं से।

एफएम रेनबो दिल से दिल तक म्यूजिकल यॉर्स पर फिल्म अमर प्रेम का ये गीत जिसमें आवाज से लता मंगेशकर की गीत के बोल आनंद बख्शी के और आर डी बर्मन ने से धुन में पिरोया था। फिलहाल चलते हैं अगले गीत की ओर और आप सुनेंगे ये अगला तराना जो कि है लता मंगेशकर की आवाज में, साथ ही आवाज है मोहम्मद अजीज की।

वेल फ्रेंड्स, अभी आप सुन रहे थे गोविंदा आला रे, और आज यानी जन्माष्टमी के दिवस पर गोविंदा आला रे कहते हुए ये मटकी फोड़ने की जो रस्म है ये बहुत ही खूबसूरत एक तरह से हम कह सकते हैं रस्म भी है, एक खेल जैसा है। और अगर अभी अभी आपने सुना मीका सिंह के साथ श्रेया घोषाल की आवाज़ में गोविंदा आला रे, लेकिन एक और इसका वर्जन है और वो वर्जन है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। तो आइए सुनते हैं अब वो वाला वर्जन जिसमें आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की।

शाम रोक लई रोक लई रोक लई थाई शाम रोक लई और चक मुख चूम लई मुख चूम लई मुख चूम लई सर से मोरी चुनरी गई गई गई सर से मोरी चुनरी गई।

की भरी मटकी, दधकी भरी मटकी, दधकी भरी मटकी लई जात रही डगर बीच। आहट सुन, आहट सुन, आहट सुन, जियरा गयो धड़क धड़क।

दोस्तों, जब बात श्री कृष्ण की आती है तो उनके जीवन में जो डिफरेंट डिफरेंट संदेश, जो अलग अलग संदेश उन्होंने हमें दिए, उन सभी संदेशों, उन सभी माध्यमों से हमने अपने जीवन के जीने के लिए कई राह देखे भी। और दोस्तों, फिलहाल आप सभी को बता दें कि अभी जो आप गीत सुनेंगे ये है मधुश्री की आवाज़ में। तो कृष्ण के जीवन के जो डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, वो सारे फ्लेवर्स आज के सभी गीतों में आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। अगला गीत मधुश्री की आवाज़ में, बाहुबली 2 से।

0: दोस्तों, फिलहाल स्टूडियो की घड़ी में जो समय हो रहा है वो ये इशारा कर रहा है कि आपसे लेना है विदा। चलते चलते आप सभी के लिए सुखविंदर सिंह स्माइल दरबार की आवाज में किसना फिल्म से टाइटल ट्रैक देविका लेती है आपसे इजाजत। फिर होगी आपसे मुलाकात इसी वादे के साथ। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: और प्रेमिका को राधा जी के रूप में देखा जाता है।
0: वेल फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं 107 FM रेनबो, दिल से दिल तक म्यूजिकली योर्स। और आप सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाओं के साथ गुड नाइट, शब खैर, और आप सभी रहें खुश। तो फिलहाल आप सभी के लिए पेश है आज के कार्यक्रम का ये अगला तराना।

0: লাভ শর্টসে আজ শুনলে সৌমির লেখা প্রিয়তম মনে রেখো। গল্পের নারেশনে রাজীব, বিতান অর্ণব, তিয়াশা অপরূপা, মধুরিমা অভিপ্সা ও মন্টুদা উজ্জ্বল।
1: Love Junction, every Friday at 9 p.m. only on 107 FM Rainbow. Shuncho 107 FM Rainbow. Shat Shure Sharadi. Shat Shure Sharadi.
2: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की, आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026. A moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric